0: friend and a stranger.
1: Sir, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए.

वादा किया हुआ उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है।

7 साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम।

सादा काबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खसी है।

0: द स्ट्रेंजर।
1: सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए।

7 साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम।

सादा काबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खसी है।